0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
1: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
2: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावनाएं हैं। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
1: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील द फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंचे।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 7 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वाह बहिणी वाह, आजच्या नाश्त्याची चवच काही आवड होती। काहो खिचडी साठी साबुदाणा कुठला वापरतात?
2: कॅमल सुपरफाईन साबुदाणा, स्वच्छ शुभ्र निवडक आणि दाणेदार। सकाळचा नाश्ता असू द्या नाहीतर उपवास असू द्या, कॅमल साबुदाणा एकदम चवदार।
1: कॅमल सुपरफाईन साबुदाणा एक

0: शकतो. आताच आपण सुरेश वाडकर आणि सहकाऱ्यांच्या सुरातील गीतरचना ऐकलीत. या गीतरचनेबरोबरच आजचा भावधारा हा सुगम गीतांचा कार्यक्रम संपला. भावधारा हा सुगम गीतांचा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या बीड केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला.
1: भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया. प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार दोगुना हो जाएगा. उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है. मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड.
2: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है.
3: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है. मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ. ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है.
2: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा. प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.
3: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है. मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये. और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं.
2: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी. उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा.
4: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे. स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे. ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है. समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है. उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है.
5: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है. हमारे विशाल इंप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग हो

0: इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जो स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
4: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
1: ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 3 दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ है मुकेश कुमार।
5: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मेकी

0: मेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सिनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थी। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। India and New Zealand signed 5 MOUs in key areas including defense, disaster management and animal husbandry to boost economic and strategic cooperation. Prime Minister Narendra Modi holds delegation-level talks with New Zealand Prime Minister Christopher Luxon in Auckland, says India and New Zealand can play important role in strengthening peace and security in Indo-Pacific region. Indian Navy to commission indigenous stealth frigate Mahendragiri in Vishakhapatnam today. Home Minister Amit Shah reviews progress in rollout of Bureau of Port Security, directs stronger coastal security measures. In FIFA World Cup, Spain books spot in semi-finals, defeating Belgium 2-1. Norway to face England in third quarter final.

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाने कितनी पीढ़ियों की स्मृतियों में बसी है विविध भारती की विशेष जयमाला। फिल्म जगत की तमाम मशहूर हस्तियों ने पेश किया है ये कार्यक्रम। अमिताभ बच्चन।
1: शुरू शुरू में लोग मुझसे कहते ये भी कोई नाम हुआ अमिताभ, बड़ा अजीब सा नाम है, और फिर साथ में बच्चन, लोग तुम्हें बच्चा कहेंगे। मेरे साथियों का विचार था कि इस नाम के साथ मुझे प्रसिद्धि नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने कोई और नाम रखने का स्वीकार नहीं किया।
0: मीना कुमारी।
2: आज मैं अपनी पसंद को आपकी पसंद मानकर आपके इस खास कार्यक्रम जयमाला को पेश करने लगी हूँ।
0: जीवन।
3: फौजी भाइयों, कश्मीर जन्नत नजीर। कश्मीर का जिक्र आते ही ख्याल आया कि मैं अपने देश के इसी खूबसूरत इलाके में पैदा हुआ था।
0: देव आनंद।
4: फौजी भाइयों, आपने 30 बरस की फौजी जिंदगी में मैंने कितनी फिल्मों में काम किया मुझे कुछ याद नहीं, इसलिए कि काम में इतना मशगूल रहता हूँ कि पिछला सारा टटोल टटोल का खोज निकालने में वक्त जाता है और काम रुक जाता है। आगे की रफ्तार तेज है और रुक कर पीछे मुड़कर गुजरे हुए माइलस्टोन्स को क्यों गिना जाए।
0: बीते करीब 6 दशकों से ज्यादा वक्त से विविध भारती पर गूंज रही है विशेष जयमाला।
5: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
6: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
5: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
7: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
8: और आ गया। एक और आ गया।
9: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
10: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
11: सुनिए, आप सुन रहे हैं विविध भारती।
5: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा।
2: किसने कहा है? यशोदन एक लड़का आया है।

0: कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
1: संगीतकार रविंद्र जैन।
0: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
2: कभी इस पग में

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज की फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

0: का
1: ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा। तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: जाए।
1: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
0: देखो

0: फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं आया।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुन टुन।

0: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।

0: शिकायत कर लो।
1: अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधेगी में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज अपने फन के जरिए आज भी हम सब के दिलों पर राज कर रही हैं।
2: अफसाना लिख रही हूँ।

0: तो आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत।
2: आम्ही आकाशवाणीच्या बीड केंद्रावरून बोलत आहोत। श्रोता, सकाळचे ठीक 10 वाजलेले आहेत। प्रसाय घेत आहोत श्रोत्यांच्या मनपसंत मराठी गीतांचा फोनिंग कार्यक्रम हॅलो गीतमाला। पंतत्पूर्वी एक जाहिरात संदेश।
3: QR कोड स्कॅन करा, 5,000 कॅशबॅक मिळवा। वा, दिवस वसूल झाला।
4: फसला UPI पिन एंटरिंग, फक्त पैसे पाठवण्यासाठी।
5: RBI सांगते,
4: जाणकार बना, सतर्क राहा।
2: श्रोता, ऐकूया श्रोत्यांच्या मनपसंत मराठी गीतांचा फोन इन कार्यक्रम हॅलो गीत मला। निवेदन गोपाळ ठाकूर यांचं, तर सादरकर्ते आहेत योगीराज बच्चे। ऐकूयात हॅलो गीत मला हा फोन इन कार्यक्रम।
6: हॅलो गीत मला।

दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं सुरीला सफर कार्यक्रम। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। वैसे जो श्रोता विविध भारती के फेसबुक पेज पर हैं, जुड़े हैं, उन्हें पता चल गया होगा कि आज की इबारत क्या है, लेकिन जो लोग विविध भारती के फेसबुक पेज पर मौजूद नहीं है, उनके लिए हम आज की इबारत बता देते हैं। वैसे संक्षेप में बता दें कि इस कार्यक्रम का स्वरूप ये है कि हम एक इबारत पोस्ट करते हैं और उस इबारत से जुड़ी हुई बातें आपको साझा करनी है। उनमें जो शब्द शामिल होते हैं, उन शब्दों से गीत आपको चुनने होते हैं और कुछ गीत हम अपने आप सहेज कर रखते हैं, तो देखते हैं कि आपके और हमारे गाने कितने मैच करते हैं। बहरहाल, इबारत जरा हम पढ़कर आपको सुना दें। ये दिल बड़ा अजीब है, कभी खुद से रूठ जाता है, कभी जमाने से, कभी खुशियों की पालकी पर उड़ इंतजार के मोती पिरोता है, तो कभी यादों की नदी में डूबकर मुस्कान सजा लेता है, कभी अनकही बातों के बोझ तले खामोश हो जाता है और हर सुबह नई आशाओं के दीप जलाकर मुस्कुरा उठता है, कभी उदास शाम को तन्हाई की चादर ओढ़ चांद का रास्ता देखता है। शायद इसी का नाम दिल है, जो टूट कर भी खामोशियों और तन्हाइयों को गुनगुनाता हुआ प्यार या प्रेम को जिंदगी में घोल लेता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज टिप्पणियों में गाने लिख डाले हैं, जिनमें बहुत सारे गाने हमने चुन रखे हैं, वही जो आप सुनना चाहते हैं। दोस्तों, लेकिन ये बात जरा हमें बताइए कि कौन सी वो बात है जो आपके दिल में आई और आपने उसे बड़ी रुखाई के साथ नजरअंदाज कर दिया। कौन सी वो बात है जब आपने अपने दिल की बात सुनी और मानी? कौन सा ऐसा मौका आया जब दिल और दिमाग में द्वंद्व हुआ? वैसे दिल बहुत जज्बाती है, तो दिल पर बोझ ज्यादा न डालें। अपने दिल की हिफाजत के लिए रोजाना आप क्या करते हैं, ये भी जरा विविध भारती के फेसबुक पेज पर बताइएगा। और हाँ, आज की इस इबारत में इंतजार भी है, खामोशी है, रास्ता है और बहुत कुछ है, तो शब्दों से जुड़ी हुई बातें भी आप लिख सकते हैं। शब्द ढूंढिए, उसमें कौन से शब्द हैं जिस पर गाने हैं, और गाने हमें सुझाते चलिए। हम सुनवा रहे हैं ये गाना, और इस गाने का जिक्र बहुत सारे श्रोताओं ने किया है।

जरा देखिए, आपका गाना भी तो यही नहीं है या कोई और गाना है? कौन है हीरोइन पर्दे पर ये भी बताइएगा, और गीतकार का नाम भी आपको बूझना है। फिल्म अनुपमा। संगीतकार का नाम पता है क्या आपको? हेमंत कुमार।

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है। हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही।

ही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत, जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा बूझिए। तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज़ दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब जब तक उड़ता है कमोवेश, यही हाल दिल का भी।

है। जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं। दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमजोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है। इसलिए अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, ज़रा बूझते रहिए। आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतजार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है, तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो बताइए, आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नज़रअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौक़ों पर दीप जलाते हैं आप, ज़रा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाज़ें।

चितचोर फिल्म का गाना था, येसुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहाब पर्दे पर होते हैं। और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्यौहार के दौरान होती है, पर अपने घर के मंदिर में तो रोज ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा, तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका, जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी, तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज़्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज़्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं, जहाँ एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है, लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले, चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और ज़रा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि हाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब, तो अपनी

आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है, फिल्म आकाश देव, तो सुन लीजिए यही गाना, दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज़ थी, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से, सुबह शाम, उदास, तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान, सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत

रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए, तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं। आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का ज़माना बड़ा गजब का है। ज़रा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं। बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है, तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

दो फूल फिल्म का ये गाना था, लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार अबलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूँ तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना

अच्छा जी, मैं हारी ये वाला गाना लिखा है और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने। लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे, तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ, रूठे रहो, हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तन्हा होता हूँ तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूँ, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूँ, अखबार भी पढ़ लेता हूँ, या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो चुप हो जाती हूँ, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का गुस्सा भी खत्म हो जाता है, आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे, जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं, और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई, अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना, और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं, जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूँ तो न मनाती हूँ न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठ

तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब ना मैं रूठूं ना तुम रूठो, ये वाला हिसाब किताब है ना। और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारेख हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो ज़रूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहाँ इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारी एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है, गानों की लंबी फहरिस्त दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई, और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है। तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जरा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म फिर सुबह।

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास ख़ास तौर से टीन एज बच्चे जब पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना ज़रूर गा के सुना दीजिए कि हाँ सुबह ज़रूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुज़ुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिर लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफ़र। बाकी खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है, पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी जमाने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं, फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी जरा बताइएगा। फिल्म आह

आह फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये।

गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है, और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की, किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने दिल की बातें की। दिल की बातें श्रोताओं ने ज़्यादा की। बहरहाल कुछ श्रोताओं ने यह भी लिखा है कि आज का सुरीला सफ़र सुनते हुए हमारी दोपहर सुरीली हो गई। भाई, हमारी दोपहर भी सुरीली हो जाती है आपके साथ, जब आपकी टिप्पणियों के साथ हम होते हैं। बहरहाल आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत शुक्रिया। सुरीला सफ़र कार्यक्रम का सफ़र आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।

श्रोताओं नमस्कार। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो घर बनाकर रहता है। एक निश्चित उम्र में वो घर बसाता है और अपने परिवार को बढ़ाने की ओर अग्रसर होता है। कई तरह के पड़ाव किसी भी मनुष्य के जीवन में आते हैं, जिनमें किसी बच्चे के जन्म को सबसे खास माना जाता है। एक नन्हा सा जीव जब दुनिया में आंखें खोलता है तो सभी की आंखों का तारा बन जाता है। उसके परवरिश करते करते कई बार माता पिता को ये लगता है कि एक और संतान हो जो उनकी पहली संतान को भाई या बहन के रूप में साथ देने आ जाए।

व्यक्ति की चाह होती है कि उसका अंश इस दुनिया में आए। अमूमन सभी को एक संतान का होना आवश्यक लगता है, परंतु कई सामाजिक रीतियां ऐसी हैं जो ये जताती हैं कि किसी भी व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाने का काम उनके बेटे ही करते हैं। कई बार बेटों की चाह में भी लगातार संतान पैदा की जाती हैं और एक ही परिवार में कई बच्चे होते जाते हैं। इससे न सिर्फ जनसंख्या बढ़ती है बल्कि इतने बच्चों का पालन पोषण भी एक मुश्किल काम होता जाता है। ज्यादा बच्चों के होने से परिवार में सभी की उचित शिक्षा, उच्च जीवन और जरूरी आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो पाती हैं। रह जाते हैं आंखों में अनगिनत अधूरे ख्वाब।

किसी भी देश की जनसंख्या एक ओर उस देश की शक्ति का प्रतीक होती है, वहीं उस देश के विकास और प्रगति के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी अति आवश्यक होता है। यदि किसी देश की जनसंख्या लगातार बढ़ती जाए तो उस देश में संसाधनों की कमी, बेरोजगारी, गरीबी और अव्यवस्था बढ़ती जाएगी। लोगों के पास जीवन की मूलभूत

आवश्यकताओं को पाने के लिए भी जरूरी साधन नहीं होंगे। यही कारण है कि जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए समय समय पर अलग अलग जागरूकता कार्यक्रमों के जरिए लोगों को परिवार नियोजन की आवश्यकताएं बताई जाती हैं। कई अलग अलग स्लोगन्स के जरिए भी इस बात पर जोर दिया जाता है, जैसे हम दो हमारे दो।

तो देश और परिवार की उन्नति के लिए उचित निर्णय सभी से अपेक्षित है। इसी संदेश के साथ त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था, वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।

0: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
0: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम है। यहाँ रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
1: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 इकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
1: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई-बुक का एक्सेस है।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में

0: विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाय इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानसोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री

0: स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूं मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। चिराग फिल्म का गाना है लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें। शब्दकार मजरूर सुल्तानपुरी, संगीतकार मदन मोहन।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कर...

0: कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: ना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
3: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
2: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
1: तुम्हारी याद सताते हैं
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आदित्य राउत और इनके अन्य साथी, और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

जीने की राह फिल्म का गाना था, मोहम्मद रफी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और चिट्ठी मिली बरगी नगर जबलपुर से रविंद्र गद्रे, सुभाष गद्रे, दिगंबर, राजेश, शुभांगी, सृष्टि और इनके परिवार के अन्य लोगों की ओर से। दयालबंद बिलासपुर छत्तीसगढ़ से पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लेला और इनके अन्य साथी, और फरमाइश भेजी छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया यादव, सन्नी कोमल यादव और इनके परिवार के अन्य लोग। प्रयागराज से पिंकू और बबली की ओर से फरमाइश आई। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म अनामिका, किशोर कुमार की आवाज, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, राहुल देवर्मन का संगीत।

अनामिका फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। रंगारेड्डी एकलव्य नगर से वेंकटेश, श्यामला, सायोना, साई प्रकाश, सुषमा, बाबू अकेला और इनका पूरा परिवार, गांव चलाला काठियावाड़ से सुलेमान भाई दल, खलील दल और इनके अन्य साथी, और इसी गाने की फरमाइश आई थी कटारिया कच्छ से मानविक राघाणी, डॉक्टर निषाद, कबीर, रमजान और इनके अन्य साथी, मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा से देवी राम इनवाती, दामिनी इनवाती। चलिए सुनते हैं अगला गीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में आप सुन रहे थे राजा मेहदी अली खां का लिखा ये गाना। संगीत मदन मोहन का था, फिल्म थी मेरा साया, और इसे पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। उल्लासनगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर ने इसी गीत की

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओह मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कोड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस।
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, हुमल महिंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूत पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूत पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, ये पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: ये है रहीम की ठाणी। बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं,

0: था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खान महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
1: अपराधी रहीम का अहमदपुर की जेल तोड़ के फरार, उसके सर पर 1,00,000 का इनाम, ब्रिटिश हुकूमत का ऐलान। पढ़िए पढ़िए।

0: Hello, hello, hello.
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना,
1: हाँ पीर बाबा,
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने। हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूं, अदना सा खादिम हूं आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूं।
0: बेटे रहीमा, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत, तूने जान नहीं ले ली उसकी?
1: होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहां था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूं?
1: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
0: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
1: जेल से तो निकल ही आया हूं और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
0: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहां?
1: अभी तो आपके

0: मैं हूं। जहां का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
1: और तेरे साथी?
0: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
1: देख रही मां, यहां इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
0: हाँ बाबा।
1: तेरा यहां रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
0: जो हुकुम पीर बाबा।
1: अल्लाह।
0: बाबा
1: बोल बेटे।
0: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो।
1: हाँ हाँ बोल।
0: इस हकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
1: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमां, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
0: अच्छा बाबा। खुदा हाफिज बाबा।
1: अल्लाह हाफिज।

0: बड़े कमानदाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग मांगणियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पी पगारों की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारों की दुआ कबूल फरमाएं। बाज़ाब्ता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुक्म अंदाता।
3: महारावल का इकबाल बुलंद हो, नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
1: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
3: हुजूर की मेहरबानी है।
1: दीवान जी कुछ सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
3: जो हुक्म अंदाता।
4: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
3: खबर सही है।
4: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
3: एकदम सच है।
4: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोनी पिटवा रखी है।
3: आप बजा फरमाते।
4: क्या तुम वही रहीम खां हो?
3: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
1: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
3: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
1: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
3: गुस्ताखी माफ हो अंदाता, रहीमा इंसानियत की वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस छीन लाने का काम अंजाम देता है।
1: तुम्हारी ज़बान से बगावत की बू आती है।
3: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
4: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
3: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।

0: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें माहवार
1: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता। आपने जो भरोसा रख

0: की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, रैन का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त बहस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के प्लान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांध कर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harsan. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से Mr. Harsan, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हरसन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
3: राम सिंह
4: हुकुम अंदाता।
2: हरसन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness.
4: रहीम खां का सलाम दीवान जी।
5: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
4: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूं दीवान जी, अंधाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूं दीवान जी।
5: कैसी वारदात?
4: वहां अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक

0: वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
1: कैसी वारदात?
0: वहाँ अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है, गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
1: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
0: जब तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
1: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
0: यहां मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
1: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
0: अच्छा, अलविदा।
1: अलविदा। ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: रो रहे भाई, पानी कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूँ करीमा, माल कहाँ?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं, जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहने दे इसे।
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया, उस अंधाधा को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई, चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा, आगे ये काम तुम लोग करना। फिरंगी राज से टक्कर

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे डॉगीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ

0: मंदाकिनी जोशी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
0: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
1: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
0: अच्छा।
1: हम सब बहन भाइयों का। दरअसल मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददिहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील।
0: जी,
1: मेरे पिताजी लाहौर में पढ़े, श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहाँ पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था। वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
0: जी।
1: तो मेरा जो ननिहाल था वो, चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है। तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माताजी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसओन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आंख खुली और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी है, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की और ये सारी चीजें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता और।
0: जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है।
1: जी,
0: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन लें।
1: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
0: जी,
1: रोशन साहब का म्यूजिक है और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे
0: याद आया। क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये।
1: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ये जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में। और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है।
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा।
0: जी जी।
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना, तो

0: से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है, मुझे क्यों नहीं. तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें.
1: बिल्कुल, एक हेल्दी कंपटीशन रहा हमेशा.
0: जी.
1: तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
0: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे. और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था. तो शादी हुई. पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं, मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ. इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ. क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता.
1: जी.
0: पुरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना. तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे. और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है, वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा, अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के. मैंने कहा, पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा, छुट्टी है, मैं करूंगा. मैं, वो बैठ नहीं सकते थे.
1: हाँ.
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
1: फ्री नहीं बैठ.
0: हाँ, फ्री नहीं बैठ. तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे. मैंने कहा, क्या कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले, नहीं तुम्हारा वो करना. मैंने कहा, इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति के, इतना आपने जिंदगी हो गई है, आपके 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको, इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं. तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूँ, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है.
1: जी,
0: और वही पुरी साहब में था.
1: जी.

0: ओम पुरी साहब के अभिनय के बारे में तो हम आपसे क्या कहें, मतलब उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर, मतलब संवाद बोलता था उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनकी जज्बात फीलिंग्स
1: जी
0: वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था। तो उसमें हम तीनों ही वहां थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म। बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माय सन द फेनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो ज़ारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी। मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं
0: जी
1: कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी जी जी
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं वो, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते
0: जी
1: हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं। उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है,
0: बिल्कुल
1: हंसाना बहुत
0: बहुत
1: मुश्किल
0: मुश्किल।
1: है। तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी
0: जी
1: इनको
0: जी और
1: मैं। जी
0: इंटरनेशनल लेवल के कलाकार, उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से
1: जी
0: प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं हो
0: बिल्कुल।
1: सकता।
0: आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना,
1: जी
0: और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं
1: जी
0: तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी,
1: जी
0: तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीज़ें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं। और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता है, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीजों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: जी।
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूजिक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूजिक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज है, उसको सुनती हूँ।
0: तो
1: जी
0: अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनो ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ

0: वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है।
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ।
0: जी
1: मेरी माता जी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है।

0: वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी
0: अच्छा, छुपकर
1: जी।
0: क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और वो मुशायरों में जाती थी। उन मुशायरों में साहिर लुधियानवी, कैफी आजमी, मजरू सुल्तानपुरी, फिराक गोरखपुरी जैसे बड़े बड़े शायरों के बीच, और माँ जिस तरह की शायरी करती थी उनके आगे हम कुछ नहीं। और मैंने तो फ्री वर्स में अतुकांत लिखना शुरू किया था, तो इसलिए मुझे लगता था कि तो बड़ी बेकार सी चीजें हैं, लेकिन मन में उद्गार आते थे तो उसको कागज पे उतार लेती थी। तब से शुरू किया मैंने।
0: जी। तो सबसे पहले क्या लिखा, आपको याद है कि जब लेखन की शुरुआत हुई होगी तो सबसे
1: जी
0: पहला क्या लिखा
1: सब
0: गया होगा?
1: ऐसे एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती हूँ कि पहला कौन सी रचना थी, लेकिन वही 15-16 साल की उम्र में मैंने अपने माता पिता पे एक 4 लाइनें लिखी थी। तुम अपने आंचल पर एक घनेरी छांव काढ़ दो, ताकि मई जून की तपती गर्मी में भूख और प्यास से बेहाल जब मैं उस छांव का आश्रय पा सकूं, तो मुझे लगे भूले भटके प्यासे राही का पड़ाव यहीं तक, बस
0: क्या
1: यहीं
0: बात,
1: तक।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सीमा जी, बातचीत का ये सिलसिला तो चलता रहेगा, आपकी पसंद का ये गीत सुन लिया जाए।
1: जी बिल्कुल।

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहां जहां पढ़े पग संतन के वहीं वहीं भंटा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी
1: दिल्ली
0: हाँ
1: में।
0: जी
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते हैं वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद, चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत जरूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था, दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य।
0: जी
1: और चूंकि नौसिखिया थे, इस फील्ड में आता नहीं था ज्यादा, तो काफी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया,
0: सीखते
1: तब
0: हैं।
1: से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी, कई मैंने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी, महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से,
0: जी
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊँ। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं,
0: जी
1: उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज,
0: नीरज
1: उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड,
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में ही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा।
1: जी
0: लेकिन आपको क्या लगता है

0: सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नज़र में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी,
0: महानदी।
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहाँ पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीज़ों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुँच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहाँ पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं।
1: जी, मेरी पसंद का गीत है।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीजों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है,

0: हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है. तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया. लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है. इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है. हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे. तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं. अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज़्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं.
1: क्या बात है.
0: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं. फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं. वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए.
1: तो आपकी रचनाओं में जो आपके किरदार है वो बहुत जीवंत हैं. आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए. तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं, या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूँ, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
0: बहुत ज्यादा. आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं. उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं. जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं. अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं, तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, ना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना. गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
1: जी.
0: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो है ना. हाँ
1: बिल्कुल सही कहा. तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
0: जी.
1: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
0: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है. मध्य प्रदेश, मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं. तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी वहाँ पर. कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही
1: याद आती है.
0: माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे. वो 9 महीने आप तो निश्चिंत थे,
1: बिल्कुल
0: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं. तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई. जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका. तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा, तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, 2 और घर होंगे ज़्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो. 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपये आज मांगे. तो कह लेंगे, नहीं मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है, वरना मुझे बेच दिया जाएगा. तो मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा, मतलब मैं समझी नहीं. तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा

0: रहा है तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके। तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी।
1: जी जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी।
0: जी,

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जिसे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही हूँ, छलांगे मारती है। ये भी लिख दो, वो भी लिख दे, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना। आपका जो कैनवास है वो सिमट के

0: का पर्दे जितना हो जाता है, राइटर का तो कैनवास आकाश है
1: जी।
0: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरूह होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूजिक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस कैसे ले।
1: बिल्कुल,
0: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
1: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही, इतना एक वाइड जैसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
0: देखिए क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा, और अभी भी सीख ही रहे हैं।
1: हर पलम सीखते
0: जी,
1: ही हैं।
0: जी।
1: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है, जीना जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है, तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है, और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं, लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं, या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में प्राचीन काल में तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया, और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद मैं बहुत फॉर्चुनेट सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुंह फट थी थोड़ा सा इस मामले में, बोल देती थी, आउटस्पोकन थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है, उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा

0: मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो,
1: जी
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं। आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे,
1: उनकी मेहनत।
0: उनकी मेहनत और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं, जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा, स्टार
1: जी।
0: नहीं बनते हैं ना
1: जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई

0: किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ ना कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो।
1: बहुत दुख होता है और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता पे। और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो है ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
0: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
1: जी।

ये था सुप्रसिद्ध राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
0: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। छाया गीत बस कुछ ही पलों के बाद।

छाया गीत लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। प्यार मोहब्बत इश्क की बातें आसान कहाँ हैं। एक ओर उनके दीदार का रहता है इंतजार, तो वहीं उस नजर का तीर भी हो जाता है दिल के आर पार। नजरों की इनायत और नजरों की बगावत का अंदाजा तो उन्हीं को है जिन्होंने खाई है चोट एक नजर की। वो एक नजर जो दिल को अपने साथ बांध ले जाए, या वो नजर जो दिल को तार तार कर जाए और दिल आह भर कर ये कह उठे।

0: गई रे।
1: उफ, ये प्यार करना भी किस दौर में आसान रहा है। दुनिया जमाने की नजरों की परवाह कहाँ चैन लेने देती है प्रेमी युगल को। न मिलना आसान है, न बातें करना। मुलाकात यूं खत्म हुई जाती है कि मानो पलक झपकी और वक्त बदला। आखिर ये दिल दीवाना भी खुद को संभाले कब तक। कभी थामा जो हुस्न का आंचल, तो बेबस नजर कह उठती है, करती है यही गुजारिश, आह

आसान, बस इतना समझ लीजिए, मिलने की तमन्ना है और चारों ओर जमाना है। जमाने के इस पहरेदारी के बीच आखिर दो दिल मिले तो किस तरह, ना दो बातें हो सकती हैं, ना नजरें चार। भाई कैसे संभाले ये दिले बेकरार, ना छेड़ा कोई तराना, ना बजाई कोई धुन, ढलने लगी है शाम, अब ये तो बताओ कैसे ढूंढे तुमको हम। शाम।

0: आप सुन रहे हैं छाया गीत। भाई बहुत हुई दुनियादारी, मोहब्बत की भी है अपनी जिम्मेदारी। अब इस दुनिया के सामने कर दिया है ऐलान, जो करना है कर लो, देखा जाएगा अंजाम। इस दुनिया से अब डरने का समय हुआ खत्म, आहें ना भरेंगे, खुल के कहेंगे हम, क्या हुआ जो दिल हमने दिया, क्या हुआ जो दिल तुमसे लिया। मोहब्बत के दुश्मन ऐ जमाने सुन ले, की है मोहब्बत कोई चोरी तो नहीं, दिल के बदले लिया है दिल, अब तेरी सुनेंगे नहीं।
1: हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दीवाना, अजी हम तो

0: दुनिया में हम जैसे आशिक भी कहाँ होते हैं।
1: अरे वाह रे मजनू,
0: लैला लैला करेगा, लैला ओ लैला, लैला लैला करेगा, ठंडी आहें भरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत।

0: ये तो बताओ हमको,
1: डूब मरो,
0: डूबेगा नहीं तरेगा, छप छप छप छप छप छप छप, डूबेगा नहीं तरेगा, प्यार से हम नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहिए जमाना कहे हमको दीवाना, आज हम तो मोहब्बत करेगा।
2: हमने तो इश्क में दुनिया भुला दी और वो हमसे पूछते हैं कि तुम हमारे हो कौन। अब तक तो सताती रही दुनिया की रस्में, अब कैसे तुम्हें समझाए अपने दिल की कस्में। वो तुम्हारी आंखें ही थी जिन्होंने किया था पहला वार, और काम से गया था अपना ये दिल बेकार। अब करोगी ऐसी बातें जनाब, तो इश्क का इश्क से ही मिलेगा जवाब।

आ ही गई वो प्यार की देवी हमारे सामने, देख के जिसको लगा ऐसा कि अपने दिल को थाम ले। अब क्या करेगी ये दुनिया सारी, वो तो खुद ही उसके हुस्न पर वारी। कल तक जो कहते रहे मोहब्बत को बड़ी बीमारी, आज खुद ही दिल को हाथ में लेकर कर रहे हैं खुद ही देने की तैयारी। मैं

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: यू आणि हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून. ही आकाशवाणी सांगली केंद्राची निर्मिती होती.
1: मित्रमैत्रिणींनो, दिनांक 12 जुलै 2026 रविवार रोजी सायंकाळी 5:30 युवावाणी या कार्यक्रमाच्या राज्यस्तरीय प्रसारणामध्ये जरूर ऐका पखवाज वादक ऋषिकेश पांचाळ या युवा मित्राची सुमेधा कुलकर्णी या आपल्या मैत्रिणीने घेतलेली मुलाखत ही आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती असेल. मैत्रिणींनो, दिनांक 12 जुलै 2026 रविवार रोजी दुपारी 12 वनिता मंडळ या कार्यक्रमाच्या राज्यस्तरीय प्रसारणामध्ये सुरुवातीला आपण ऐकणार आहात बालिका तसेच महिला सुरक्षा विषयक कायदे आणि त्यांची अंमलबजावणी याविषयी ॲडव्होकेट भक्ती धोंडोपंत कुलकर्णी यांच्या मुलाखतीचा भाग दुसरा आणि त्यानंतर महिलांचे आजार आणि योग याविषयी आयुर्वेद तज्ज्ञ आणि योग शिक्षिका डॉक्टर मंजुषा चौधरी यांच्या मुलाखतीचा भाग दुसरा ही आकाशवाणी परभणी केंद्राची निर्मिती असेल.
0: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी यानंतर ठीक 6 आपण ऐकू शकाल हिंदी समाचार. हे हिंदीतून दिलं जाणारं बातमीपत्र आणि 6:05 इंग्रजी समाचार. हे इंग्रजीतून दिलं जाणारं बातमीपत्र. ही दोन्ही बातमीपत्रं आम्ही आकाशवाणी दिल्ली केंद्रावरून सहक्षेपित करीत आहोत. सुरुवातीला ठीक 6 हिंदी समाचार.
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी 2 की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं. 4 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी. इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की. दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए. इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया. प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया. न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की. श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है.
3: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं. यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं.
2: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया. प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है. श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक

0: अनेक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि यह योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. They witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे कोई जानता नहीं था, तब भी मुझे यहाँ न्यूजीलैंड आने का अवसर मिला था।
1: The Pradhan Mantri formalization of micro food processing enterprises scheme has crossed the milestone of sanctioning loans to more than 2 lakh micro food processing enterprises across the country. The scheme has leveraged project investments of over 20,300 crore rupees and generated nearly 11 lakh direct and indirect employment opportunities.

0: अथ वार्ताः विशदीकृत्य। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्वस्य ऐतिहासिकीं द्विदिवसीयां न्यूजीलैंड यात्रां सम्पाद्य अद्य भारताय प्रस्थितवान्। विगत चतुर्दशकेभ्यः अपि अधिक समयांतराले कस्यचित् भारतीय प्रधानमन्त्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा आसीत्, या द्वयोः देशयोः पारस्परिक संबंधान् सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णां भूमिकां निर्व्यूढवती। तत्र तावत् अद्य प्रधानमन्त्री मोदी सहैव न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमन्त्री क्रिस्टोफर लैक्सन इत्येतौ ऑकलैंड नगरे द्विपाक्षिक वार्तानन्तरं उभयोः देशयोः संबंधान् सामरिक सहयोगित्वेन रूपांतरितवन्तौ। अनेनैव सह त्रिंशदधिक-2000तमवर्षं यावत् उभयदेशयोः वार्षिक द्विपक्षीय व्यापारं द्विगुणीकृत्य 35,000 कोटि रूप्यकात्मकं विधातुं पञ्चवर्षीयं लक्ष्यं निर्धारितवन्तौ। शिष्टमण्डलस्तरीय मन्त्रणायां प्रधानमन्त्रिणा गदितं यत् स्वकीयः अयं न्यूजीलैंड प्रवासः द्विपाक्षिक सम्बन्धेषु केनचन ऐतिहासिक कीर्तिस्तम्भत्वेन सेत्स्यति। उभाभ्यां नेतृभ्यां प्रतिपादितं यत् हिन्द प्रशांत क्षेत्रे शान्तिं स्थिरतां सुरक्षां च सुदृढीकर्तुं भारत न्यूजीलैंड देशौ प्रमुखां भूमिकां निर्वोढुं शक्नुतः। उभयदेशयोः मध्ये सम्पन्नस्य मुक्त व्यापार सहभागित्वस्य प्रशंसा कुर्वता श्रीमोदिना न्यूजीलैंड देशस्य अक्षिप्र प्रयासाः श्लाघिताः। सहैव तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणः लैक्सन वर्यस्य कुशल नेतृत्वाय च धन्यवादः प्रकटितः।
1: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे। हमें ट्रेड के साथ साथ ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टैलेंट का ब्लूप्रिंट हम तैयार कर रहे हैं।
0: अत्रावसरे न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा आधिकारिक रूपेण घोषितं यत् इयं प्रस्ताविता सामरिक सहभागिता प्रमुखाणां क्षेत्राणां विकासार्थं सहैव पारस्परिक सहयोगस्य विस्ताराय च कञ्चन व्यापकं तन्त्रं प्रदास्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य न्यूजीलैंड देशस्य ऑकलैंड नगरे आयोजिते एकस्मिन् प्रवासी भारतीय समुदायस्य कार्यक्रमे उद्घोषितवान् यत् तत्रत्यः भारतीय समुदायः भारत न्यूजीलैंड देशयोः वर्धमानायाः सहभागितायाः अत्यन्त महत्वपूर्णः आधारस्तम्भो वर्तते। ऑकलैंडतः वेलिंगन पर्यन्तं, क्राइस्ट चर्च तः क्वींसटाउन पर्यन्तं न्यूजीलैंडस्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे उष्यमाणः भारतीय समुदायः एतस्याः संयुक्त यात्रायाः एकः अभिन्नः भागो वर्तते। स्वसंबोधने प्रधानमन्त्रिणा प्रतिपादितं यत् भारत न्यूजीलैंड सम्बन्धः स्मृतये समानमूल्याय सहैव उज्ज्वल भविष्याय च निर्मितः। अवसरेऽस्मिन् न्यूजीलैंड प्रधानमन्त्रिणा क्रिस्टोफर लैक्सन इत्यमुना उभयदेशयोः मध्ये वर्धमानस्य सामरिक आर्थिक सहयोगस्य अथ प्रगाढ़ सम्बन्धस्य विशेषरूपेण उल्लेखो विहितः। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य प्रावोचत् यत् भारतं पारम्परिक रक्षाक्षमतां सहैव आधुनिक प्रौद्योगिकीं सुदृढीकृत्य एकां बलशालिनीं आत्मनिर्भरां रक्षासेनां निर्माति। तेन प्रतिपादितं यत् आगामी युद्धेषु कृत्रिम बुद्धिमत्तायाः एवमेव अन्येषां नवीनतन्त्राणां प्रयोगः भवितुमर्हति, परञ्च अन्तिमरूपेण विजयः राष्ट्रियसङ्कल्पेन वीरसैनिकैः सक्षमसैन्यशक्त्या एव प्राप्स्यते। रक्षामन्त्रिणा प्रोदीरितं यत् प्रौद्योगिकी

0: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबई केंद्राची ही आहे अस्मिता वाहिनी. संध्याकाळचे 6:30 आणि 45 सेकंद झाले आहेत. प्रसारित करीत आहोत हिंदी कार्यक्रम विविधा.
1: नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम विविधा में आपका हार्दिक स्वागत है. मैं हूं आपका मित्र दीपक केसावलेकर. दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम सुनेंगे वर्षा गीत. वर्षा अपने साथ ठंडी फुहारें, हरियाली, मिट्टी की सौंधी महक और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य लेकर आती है. रिमझिम बरसती बूंदे केवल धरती को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी नई ताजगी और उमंग से भर देती है. इन्हीं मधुर भावों को शब्द और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं कुछ सुंदर वर्षा गीत. आइए वर्षा की फुहारों और प्रकृति के मनमोहक रंगों का आनंद लेते हैं. हमारे साथ हैं रामस्वरूप साहू जी, जो एक प्रसिद्ध गीतकार और कवि हैं. आपने अपनी कविताओं और गीतों के माध्यम से देश भर में अपनी छाप छोड़ी है. तो लीजिए सुनते हैं रामस्वरूप साहू जी के वर्षा गीत उन्हीं के स्वरों में.
2: मेरा यह गीत वर्षा के देर से आने के संदर्भ में लिखा गया है. हमारे देश में तीनों ऋतुओं का आगमन होता है, वर्षा, शरद और ग्रीष्म. इसमें वर्षा ऋतु का अधिक महत्व है और इसमें प्रकृति आनंद प्रदान करने वाला वातावरण प्रस्तुत कर देती है, जीवनदायी. यह वर्षा ऋतु

मेरा अगला गीत वर्षा ऋतु आगमन के बाद प्रकृति में होने वाले बदलाव दर्शाता है। आसमान में बादल उमड़ घुमड़ कर छाए हुए हैं, मेदिनी प्रसन्न है, चारों तरफ हरियाली है, पशु पक्षी सभी आनंद मग्न हैं। आइए गीत सुनें।

के मारे छिप गए तारे, उड़गनों ने पथ हेरा है। नभ पर मेघों का डेरा है। मेरा यह गीत बादलों के विभिन्न रूपों को वर्णित करता है। कभी वे काले और घने होकर आकाश को ढक लेते हैं, तो कभी सफ़ेद हल्के होकर हवा के साथ तैरते हैं। इस गीत में ये बादल गरजते हैं, चमकते हैं, तेज वर्षा करते हैं, तो कभी गरज कर हमें डराने लगते हैं, तो कभी बरस कर हमारे चेहरों पर खुशी ला देते हैं। सुनिए यह गीत।

के अंकुर मन में उगते हैं, भरे भरे बदरा जब नभ पर सजते हैं। मेरा अगला गीत वर्षा ऋतु के मनोहारी स्वरूप का अत्यंत सुंदर चित्रण प्रस्तुत करता है। रिमझिम बारिश, हरियाली, झूमते पेड़ पौधे, खेतों में लहलहाती फसलें और प्रकृति का अनुपम सौंदर्य इस गीत में आपको दिखाई देगा। वर्षा ऋतु के बाद धरती को ही नहीं बल्कि हमारे मन को भी आनंदित और ताजगी देगा, नई ऊर्जा से भर देगा। आइए इस सुंदर गीत के भाव

इस गीत के माध्यम से जल के महत्व तथा जल संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। मेरा यह गीत यह बताता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह पानी की एक एक बूंद का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे। जल को व्यर्थ ना बहने दें।

तो श्रोताओं, वर्षा ऋतु पर आधारित इन मधुर गीतों ने आशा है कि आपके मन को भी बारिश की ताजगी और हरियाली का सुखद एहसास कराया होगा। प्रकृति का यह अनुपम उपहार हमें आनंद के साथ साथ जल संरक्षण का संदेश भी देता है। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन भी वर्षा की फुहारों की तरह खुशियों और उल्लास से भरा रहे, अब मुझे यानी दीपक केसावलेकर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे विविधा के अगले अंक में एक नए विषय और नई प्रस्तुतियों के साथ। नमस्कार, हमारा हिंदी कार्यक्रम विविधा आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए निर्माण सहयोग रहा।

जल संरक्षण का संदेश भी देता है। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन भी वर्षा की फुहारों की तरह खुशियों और उल्लास से भरा रहे। अब मुझे यानी दीपक के सावलेकर को दीजिए अनुमति। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलेंगे विविधा के अगले अंक में एक नए विषय और नई प्रस्तुतियों के साथ। नमस्कार। हमारा हिंदी कार्यक्रम विविधा आप सुन रहे थे। इस कार्यक्रम के लिए निर्माण सहयोग रहा रत्ना मगरे का। आकाशवाणी मुंबई के लिए इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजू कुमार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
1: मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसके अध्यक्ष होंगे। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता

0: नागरिकता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789185523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम है। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली यह विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे

के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है।

0: परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, एक क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में एक विकेट पर 210 रन बना लिए हैं।

0: इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi departs for home after concluding landmark New Zealand visit. Says bilateral trade agreement between two countries will accelerate India's journey towards a developed nation. 15 Indians killed in a boat mishap in Vietnam. President, Vice President and Prime Minister express condolence. West Bengal government forms 9-member committee headed by a retired judge to examine draft bill of uniform civil code. Legendary singer S. Janaki, known as Nightingale of South India, passes away. IMD forecasts heavy rainfall across northern and eastern parts of the country for next 4 to 5 days. In FIFA World Cup, Norway to take on England, while defending champions Argentina to clash with Switzerland in quarterfinals. And Indian women's compound team clinches silver medal at Archery World Cup Stage 4 in Madrid. Prime Minister Narendra Modi has concluded his historic 2-day visit to New Zealand and departed for India. The visit, the first by an Indian Prime Minister to New Zealand in over 4 decades, gave a major boost to bilateral ties. During the visit, Prime Minister Modi held talks with his New Zealand counterpart Christopher Luxon. The two leaders witnessed the exchange of 5 memoranda of understanding in areas including defence, tourism, sports, disaster management and dairy and animal husbandry. A major highlight of the visit was the community event at Auckland's Spark Arena, attended by over 10,000 members of the Indian diaspora. Addressing the gathering, Mr. Modi stated that the future of India and New Zealand is intertwined and the bilateral trade agreement will accelerate India's journey towards a developed nation.
2: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ हैं, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ हैं, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूं हम सफल होंगे।
1: On the occasion, Prime Minister Luxon described India as a trusted friend, praised the contribution of the Indian community to New Zealand's progress, and appreciated Prime Minister Modi's leadership. Prime Minister Modi thanked Prime Minister Luxon for his warm hospitality and said the visit had opened a new chapter in India-New Zealand relations. Referring to the 40-year gap since the last visit by an Indian Prime Minister, he said the next visit would not take so long.
2: 40 साल के बाद कोई भारतीय पीएम न्यूजीलैंड की धरती पर आया है। ये मेरा सौभाग्य है। मैं न्यूजीलैंड के सभी निवासियों के लिए, आप सभी लोगों के लिए 140 करोड़ भारतीयों की शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। साथियों, प्रधानमंत्री के रूप में भले ही मेरा पहला न्यूजीलैंड दौरा है, लेकिन 25-30 साल पहले जब मैं किसी सरकार में भी हिस्सा नहीं था, सार्वजनिक जीवन में मुझे

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में, फिल्म का नाम है प्रेम पत्र, गीत रचना गुलजार साहेब की और धुन सलील चौधरी की है।
3: सावन की रातों में ऐसा भी होता है, राही कोई भूला हुआ, तूफानों में खोया हुआ राह पे आ जाता है, ऐसा भी होता है।

कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में है। फिल्म का नाम है जिंदगी और हम। इस गीत को पंडित शिव कुमार ने लिखा है और तर्ज रोशन की है।

कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं कमर जलालाबादी का लिखा गीत। इसे संगीत में ढाला है इकबाल कुरैशी ने। युगल स्वर आशा भोसले और मोहम्मद रफी के। फिल्म का नाम है ये दिल किसको दूं।

इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुनहरी नागिन फिल्म का गाना, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, फारूक केसर के बोल और कल्याण जी आनंद जी की धुन।

0: इस दो गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया अपनी दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदन एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोलो रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: वाह,

ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

जिन्होंने अपनी अदाओं से लोगों को मोहित किया, जिन्होंने अपनी मेहनत से हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त की, और महज 13 बरस की उम्र में वे मुंबई

0: चलिए दोस्तों, अब आपको बता ही देते हैं, आज के फनकार हैं गायिका उमा देवी यानी टुनटुन।
1: हमारे देश के, मेरे इधर के उधर के, आमने के सामने के, थोड़े भाइयों थोड़े मेरे प्यारों, मेरा आप सबको बहुत बहुत मोटा मोटा आशीर्वाद, प्यार और फिर छोटा सा मुन्ना सा नमस्कार।
0: टुनटुन नाम से उन्होंने अपने अभिनय की पारी जीती। 1947 में उमा देवी को अपना पहला एकल गीत गाने का मौका मिला, जिसके लिए उन्हें 200 रुपए की राशि भी मिली थी और ये राशि उन दिनों बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी।
1: सुरैया जी, फिल्म स्टार सुरैया, हाय हाय हाय हाय, उन्हीं के साथ मेरा पहला मौका गाना गाने का दर्द में मिला। आप लोग काफी सुनते हैं ये गाना, उसमें मैं भी हूँ उनके साथ, उनसे लिपटी खड़ी होके गाना गा रही थी। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, इसी में हम दोनों ने अपनी अपनी गाने की अदायगी की है।

0: मेरी नजर।
1: दोस्तों, उमा देवी को नौशाद साहब का संगीत बहुत पसंद था। जब नौशाद साहब ने उमा देवी का ऑडिशन यानी स्वर परीक्षा ली तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

0: तो चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो पहले मैं गाने गाती थी और अच्छी बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि दो तीन हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुनटुन।

0: उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
1: हाय हाय हाय हाय।
0: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज, अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

तमाम सुनने वालों को नमस्कार, और मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है सलमा, और हम लेकर आए हैं आपके लिए दिल की बातें, दिलदार की बातें, उल्फत की बातें और कुछ प्यार भरे चुनिंदा नख्मात की सौगात कार्यक्रम छाया गीत में। जज्बातों में कहीं आग सी लगी हो जैसे, एक नदी झूम के सहरा में बही हो जैसे, कानों में आपने कुछ मेरे कहा लगता है, सीने में झनकार सी उठी हो जैसे। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर बनकर, हर गली लगता है अब तेरी गली हो जैसे। अपने आगोश में हमको यूं छुपा लीजिए, जिंदगी आपके पैकर में ढली हो जैसे।

ये हवा, रंग, तबस्सुम, ये महकती खुशबू खूब फैले हैं फिजा में, तेरे परचम सारे तेरे दर पे ही रहूं है यही तमन्ना मेरी, बीत जाए तेरी गलियों में ही मौसम सारे। नींद आती नहीं, देखा है जब से तुमको, तेरी आंखों में नजर आते हैं मरहम सारे।

मैं तुम्हारी आंखों से एक बार खुद को देखना चाहती हूँ, तुम्हारी पसंद को समझकर खुद को बेहतर और संवारना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारे दिल में गहरे, बहुत गहरे डूब कर निकलना है और वहाँ से समेट कर लाई गई मोहब्बत की खुशबू को लेकर बीच आंगन में किसी फूल की तरह खिल उठना है, नए रंग और नई खुशबू के साथ। और मैं जब जब भी ऐसा सोचती हूँ, मुझे दुनिया दूर तक खूबसूरत दिखाई देती है।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं छाया गीत। इस बार जब आओ तुम यहां उदास सूनी झील में चांद तारों को साथ लेकर, तो मैं भी नजर आऊंगी तुम्हें के चाहत लौट कर आने के वादे पर एतबार करती है। तो जैसे बारिश की बूंदें जमी पर गिर के समा जाती हैं उसमें, वैसे ही समा जाऊंगी मैं भी तुम में।
1: तड़प ये दिन रात की कसम।

लिखा, कई कई बार लिखा, पानी पर लिखा, नदी पर लिखा, नदी में चलती नाव पर भी लिखा, कुछ लिखा किनारे बैठकर, ख्वाबों में तैरते हुए बहते हुए लिखा, कुछ मझधार में लिखा, कुछ लिखा डूबकर, और लिखा कि प्यार नहीं सिखाता प्यार से इनकार, और सिखाता है प्यार ही डूबना प्यार में। ये प्यार घाटे का वो सौदा है आखिर में जो फायदे से भर देता है, मुनाफे की किताबों में इसका कोई खाता नहीं, फिर भी ये दिवालिये दिल को मोहब्बत के बेशकीमती खजानों से भर दे।

रहूंगी मैं तुम्हारे साथ, जिस तरह जिंदगी के साथ सांसें, जमी के साथ आसमां, नदी समंदर के साथ लहरें पानी, फल फूलों के साथ डाली, चिड़ियों के साथ चंचल चहकार, सूरज के साथ रोशनी, खेत खलियानों के साथ हरियाली, बगिया के साथ माली, राजा के साथ रानी, मोहब्बत के साथ मेल मिलाप के जज्बात, उसी तरह रहूंगी मैं तुम्हारे।

0: साथियों, अब वक्त आ गया है कार्यक्रम से रुखसत हो जाने का। आज की मुलाकात बस इतनी। अब दीजिए सलमा को इजाजत। शुक्रिया, नमस्कार।
1: यह है विविध भारती।

0: आज हम न तोड़ेंगे ऐसा नम प्यार की कसम को।
1: हम खो गए इस दिल खो गया है कुछ हो गया है हमको।
0: किस्मत खुली है मंजिल मिली है उल्फत के हर कदम को आया।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में। रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राँझा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।